0: समूरन मेंबरन के तब्दील कई वो है।
1: की लाशें कितनी इतने जज्बाती ना हो, इसको डेमोटाइज ना करें इतना। अगर किसी सूबे की असेंबली दो तिहाई अक्सरियत से एक रेजोल्यूशन पास करती है कि किसी तरीके से सूबे को, सिंध की असेंबली में कोई मुजायका नहीं है, लोगों को भरोसा है, आप इसको इतना डेमोटाइज ना करें कि लाशें गिर जाएंगी। इंशाल्लाह
0: पर रोड बंद करे, आवाम के परेशान तो करे सकते, सिस्टम के नाकाम चवेरो थर घुमी दिसन। थर जो मॉडल समूरे मुल्क में इस्तेमाल थन घुर्जे, थर में 175 अरब टन कोयले जांदे हवाले इस्तेमाल।

प्रेम नगर जे पांधीरन खां पंध परे नाहे गाल अञा बी आहे। प्रेम नगर जे पांधीरन खां पंध परे नाहे गाल अञा बी आहे। मस्तन ते मदहोशी जे इल्ज़ाम ॾिनो आहे गाल अञा बी आहे। हंजो डारे सारे सुर में कायर पिया काहे गाल अञा बी आहे। मोर हठीला माठ रहिया पर ॼाण ॾिनी ॼाहे गाल अञा बी आहे। अस्सलाम वालेकुम समन जीएफएम 88.8 लाड़कण जे लाइव स्टूडियो मां प्रोग्राम रोशन सुबुह साण करे पंहिंजो मेज़बान नेमतुल्ला ऐं क़बूल पवेस क़बरो सलाम प्यारनि सजणनि लाइ इहा ई दो करे सदाई गुलाब जे गुलनि जी खिलंदा मुस्करंदा रहो आमीन। साईं मुंहिंजा अॼु तारीख़ आहे 7 अगस्त 2026 ऐं सफ़र अल मुज़फ़र महीने जी 23 तारीख़ आहे 1448 हिजरी सन ऐं अॼु भलारो ॾींहुं जुमे जो। साईं मुंहिंजा जुमे जे भलारे ॾींहुं यानी असां हुनखे ईद जो ॾींहुं बि सॾींदा आहियूं ऐं भलारो ॾींहुं वधीक इबादत वारो ॾींहुं आहे ऐं वधीक इबादत कजे ऐं पंहिंजे मिसकिननि खां बि हाल अहिवाल वठणु तमामु ॾुख सूर ऐं गुरबत वारो जहान जेको हूंदो आहे उन जे पंहिंजे वित वस आहार ख़िदमत करणु उन जी मदद करणु इहो

ज़रूरी हूंदो आहे ऐं ख़ासि करे जुमे निमाज़ में फर्ज़ निमाज़ खां बि हिक ॿिए सां ईअं भाकुर पाए मिलजे जीअं ईद जो ॾींहुं हूंदो आहे। उन खां बाद वेही हाल अहिवाल ॾुख सूर ओरण जुमे जे ॾींहुं तमामु वधीक ऐं बहितर अमल आहे। ऐं साईं जा असां सभिनी खे घुर्जे त हिन भलारे ॾींहुं असां पाड़े वारनि जो ख़्यालु रखूं, ग़रीबनि मिसकिननि यतीमनि जो ख़्यालु रखूं ऐं इहा ई असां जी वॾी अफ़ज़ल इबादत आहे जंहिंमें असांजो ऐं ख़ुदा करण हर जेका बि ख़िदमत माण्हू करे उहा अलाह जी रज़ा ख़ातिर कजे। इन खां वधीक इबादत बि नथी थी सघे छो त इहो अमल अलाह साईं खे तमामु घणो

साईं मुंहिंजा पूरी दुनिया जे इंसाननि जी ज़िंदह रहण जो दारोमदार जेको आहे उहो इन इबादत मां हासिल थींदड़ शयुनि ते आहे ऐं इहो सभु कुझु असांखे ज़मीन मां मिले थो ऐं अॼु ॾींहुं ताईं असां ज़मीन मां पए हासिल कयो आहे पर ज़मीन ॾींहों ॾींहुं कमज़ोर थींदी पई वञे ऐं ज़मीन में खोराकी जुज़नि जो तवाज़न घटिजी वियो आहे जंहिं सां पैदावार वधण बदिरां घटिजी रही आहे। असां पैदावार वधाइण लाइ कीमियाई भाण जो इस्तेमालु करियूं था जंहिं मां वक़्ती फ़ाइदो त मिले थो पर ज़मीन खे उन जो को बि फ़ाइदो नथो मिले छो त उहो पाण भाण ॿूटनि में जज़्ब थियो वञे। त साईं जी असांखे घुर्जे त असां वथाइण जो भाण इस्तेमालु कयूं ऐं हुन खे जेको चवंदा आहिनि जेतिरो हर ओतिरो फर असां हर वधायूं। अॼुकल्ह असां ज़मीन में हर घटाए छॾियो आहे, कोशिशि कयूं त असां वथाइण जो भाण विझूं ऐं हर वधायूं त असांजी ज़मीन जेका आहे उहा आहे वाधारो जेका जो पूरा थी सके थो।

0: इट्स 9:30 AM। दिस
1: चाहिए तो आर्च अपनाए। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में। डार्क स्पॉट एंड स्कार्स, स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शक्ल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
2: क्या आप जोमैटो के दर्द,
3: हम बनाने वाले फकीर
2: का
3: ये मासकर
2: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
3: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
2: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
3: गर्दन

0: और कंधों के दर्द
1: और पट्टों की अकड़न के लिए बेहतरीन
0: तीन से चार हज पर फौरी खत्म।
2: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

जी समय प्रोग्राम रोशन सुबह में वापस अची चुका आयूं रोशन सुबह प्रोग्राम मां ॿुधो पिया जी एफ एम एटीए जे नेटवर्क तां जंहिंमें सखर लाड़काणो मीरपुर खास मोरो मेहरापुर सकरंड मटियारी मातली स्टेशन तां तव्हां असांजो प्रोग्राम ॿुधो पिया जी एफ एम एटीए जे नेटवर्क तां मां मुंहिंजो मेज़बान नेमत अल्लाह जुणे जो साईं जा चवंदा आहिनि त इल्म इंसान जी टीं अखि आहे इल्म जेको आहे सो टीं अखि ईअं आहे जो इंसान जेको अंधो आहे इल्म खां उनखे सॼो करे थी इल्म हासिल किथां करे कजे थो उहो आहे असांजो तदरीसी जेको अमल आहे जेको असां पढ़ाऊं था इल्म पिरायूं था उहो आहे स्कूल त साईं मुंहिंजा स्कूल उहो आसमानी ककर आहे जेको इंसानी घेराबाद ज़मीन खे इल्म जे फुड़नि सां सैलाब शादाब करे थो स्कूल उहो कारखानो आहे जिते इंसानी मशीननि जा पुर्ज़ा तयारु कया वञनि था स्कूल उन ई स्टेशन जो नालो आहे जिते इंसानी ज़िंदगी जे नाले हर क़िस्म जे माल जा गोदाम मौजूदु आहिनि स्कूल उहो पारस पथर आहे जंहिंखे लॻण सां इंसान जी दिलि सच थियो पवे ऐं साईं मुंहिंजा स्कूल दुनिया जे कुल्फ जी कुंजी आहे तव्हां ॾिठो हूंदो त वकील वज़ीर हाकिम पुलिस जज हुनरमंद सियासतदान साइंसदान डॉक्टर इंजीनियर वग़ैरह सभु स्कूल जा पैदावार कयल तयार थियल आहिनि स्कूल क़ौम जे फैसलाकुन कोरट आहे ऐं उते ई क़ौम जे आईंदे जो ख़्यालु करियो पंहिंजे ॿारनि मतिलब त स्कूल ई दुनिया जी इंसान सां वाहिद वसीलो आहे जिते ॿार पढ़ी करे ऐं पंहिंजे मंज़िल ते पहुचनि था।

ऐं निंड दौरान फितरी अमल ज़रिए इंसानी जिस्म जा जेके सेल्स आहिनि उहे ताज़ा थी वेंदा आहिनि। निंड सां दिमाग़ खे सुकून मिलंदो आहे, मुख़्तलिफ़ पूरे करण में ॾींदो आहे ऐं सोच वीचार करण में आसानी थींदी आहे। तव्हांजी चमड़ीअ खे जिन शयुनि जी ज़रूरत हूंदी आहे त सॼो ॾींहुं कमु करण सां तव्हांजी चमड़ी जा जेके टिश्यूज़ आहिनि सुकण लॻंदा आहिनि ऐं अव्हां जूं अखियूं कुझु न कुझु ॾिसंदियूं रहंदियूं आहिनि। मुस्कराइण या ॻाल्हाइण में बि हरकत हूंदी आहे। सुम्हण दौरान जिस्म जूं सभु हरकतूं रुकजी वेंदियूं आहिनि ऐं अहिड़ी तरह माण्हूअ खे आराम मिलंदो आहे, बहितर आहे निंड, बहितर आहे तसर, फिर सुम्हणो आहे, बीमारियूं ख़तम थींदियूं, मंद सिहतमंद रहंदो आहे।

अजी समय कुछ दोस्त नाला अव ताई पहुंचाईंदा हलंदासीं गोठ सुमराणी इंदड़ लगे पनवाकिल खां हाफिज अमीनुल्लाह काज़ी ऐं हाफिज़ नईमुल्लाह काज़ी इमदादुल्लाह मीरपुर ख़ास खां अज़ीज़ सोलंगी भुट्टो सोलंगी ऐं नूरमन सोलंगी ऐं असांखे यादि कनि पिया ॻोठ मोलड़े माशी लॻे वॾनि वारनि खां ज़मीर हुसैन सोलंगी मुख़्तियर अली ऐं ज़हीर अब्बास वफ़ा हुसैन सोलंगी ॻोठ कंगन खां गुलाब खान कुंभर शोएब अली ऐं ग़ुलाम रसूल कुंभर ॻोठ हसू जतोइन खां मोहम्मद मूसा जतोई यार मोहम्मद नसर लाइ जतोई ॻोठ मोहम्मद कासिम चांद

जी सुबुह रोशन सुबुह प्रोग्राम में तवासा साथ रहो ठीक यारहें वगे ती कदें भी न वनो असा हलूँ पा न्यूज़ ब्रेक की तरफ ब्रेक की तरफ वरी वापस इंदी।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
3: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN News।
5: मारजी वया बिन्ही जिले में ऑपरेशन दौरान दहशत गर्दन जा गुजार ठिकाणा पिण तबाह किया वया। सिक्योरिटी फोर्सेज ऐं कानून लागू कंदड़ इदारा दहशतगर्दी जे खात्मे लाइ पुरअज़म आहिनि। दहशतगर्दी जे मुकमल खात्मे ताईं कार्रवाइयूं जारी रखियूं वेंदियूं।
6: सारी चीजें इन्होंने 29 को बॉडी मिलती है, ये 28 का बताए जा रहे हैं। कभी कचरा वाला ढूंढ रहे हैं, कभी उसके फाइनेंस को ले आते हैं, कभी किसी चीज को ले आते हैं। वो पढ़ा लिखा बच्चा था, उसके पास भी सोल्यूशन थे, तो क्या करना है? उसको बुलाया किसने? हम बात कर रहे हैं मदर की। डिजिटल करेंसी, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, ये हमें नहीं सुनना। हम चाह रहे हैं कि मर्डर क्यों हुआ, मर्डर किसने किया, 4 किलोमीटर जाके क्यों खुदकुशी करनी थी, किसने अपने सर पे एक्शूट करना था, क्यों सामने नहीं आ रहा? जब जाओ तो वहां पर हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, वो गायब है, कहां गायब है? तो हमें तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, मगर भाई कल तो किसी और को आप बिजनेसमैन को उठाकर सारा मार दो।
7: और पूरा केस प्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस राज्य पुलिस अंदरित करेगी, आपको सब तक बताएगी। अभी तक जो मैंने देखा है पुलिस की तरफ से कोई लापरवाही नहीं है। आप पूरी जो केस की आउटकम है वो पुलिस को हमें सामने आएगी। गैर दल का जो ऑफिसर है इन्वेस्टिगेशन।
5: मेडिकल बोर्ड में ओचितो तब्दीलीअ ते वापारी मीर रज़ा जे वारसन पुट जी कब्र कुशाई ऐं ॿीहर पोस्टमार्टम कराइण खां इनकार करे छॾियो। नौजवान मीर रज़ा जे वालिद मीर हुसैन चयो त हू कब्र कुशाई ते तयार थिया त राति जी ऊंदाई में मेडिकल बोर्ड तब्दील कयो वियो। हर मेडिकल बोर्ड खे इजाज़त न ॾींदा त कब्र कुशाई करे, असांजो ख़दशो सही साबित थियो। मीर रज़ा जे कतल में 82 माण्हू मुलविस आहिनि। 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड खे 5 रुकनी कयो वियो। डॉक्टर समिया सैद खां सवाइ समूरनि मेम्बरनि खे डिप्लोमासी पोरे कराची मते कतल क्लिफ्टन जे इलाइक़े बात आइलैंड में हथियारबंदनि फुर मज़ाहमत डिप्लो जे ॻोठ रहवासी मेवो मेंगवाड़ खे गोलियूं हणी कतल करे छॾियो। आड़ कराची में सिक्योरिटी गार्ड जी ड्यूटी जो लाश ज़रूरी कारियो वियो। वारसन पारां मुलविस जवाबदार गिरफ़्तार करे इंसाफ़ फराहम करण जी घुर।
4: आप सुन रहे थे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उदंदा रहो, उदंदा रहो।

जी हाँ, समय ने वापस अची कहीं प्रोग्राम रोशन सुबह में प्रोग्राम रोशन सुबह मां बुद्ध प्यार जी मां जो मेज़बान ने मतला जुणे जो सही मुझा इंसानी जिस्म में काफी बीमारियां थियन थियूं जंहिंमें डिप्रेशन बि हिकु बीमारी आहे। दुनिया में माण्हुनि खे जेकी नफ़्सियाती मामला ऐं मसइला थियनि था हुननि खे आमतौर ते डिप्रेशन कोठे वञे थो। डिप्रेशन जा मुख़्तलिफ़ सबब थियनि था जिन में को घर डुख या माशी मसइला या बेरोज़गारी उहे चंद सबब आहिनि जिन जे करे उहा सूरत हाल पैदा थिए थी। पर जेकॾहिं को डिप्रेशन जो शिकार ऐं हुननि मंझां को बि सबब हुन ते लागू नथो थिए त पोइ उन जो असुल सबब ॻोल्हण लाइ ॾुखियो थी वञे थो। हक़ीक़त इहा आहे त डिप्रेशन जो हिकड़ो वाज़ियो सबब इहो बि थी सघे थो त काफ़ी असांजी ज़िंदगी में जेकी शयूं लागू आहिनि उन में काफ़ी दोस्त नशो वापराइनि था ऐं उन मां उन मर्ज़ खे ॻोल्हे सघिजे थो। मसलन घटि निंड करण वारी आदत बि हूंदी आहे ऐं घटि निंड करण सां डिप्रेशन में वाधि जो ख़तरो थी सघे थो। त सोचण सां बि डिप्रेशन में हली वञे थो, माण्हू सोचे न जेतिरो इंसान खे ॻणिती आहे, परेशानी आहे, कहिड़ो बि मसइलो आहे त कोशिश करे सोचींदो त उन डिप्रेशन जे मर्ज़ में हली वेंदो। पर साईं जा असांखे इहो जुग आहे, असांजो इहो फर्ज़ आहे त हर मरीज़ जी इहा आदत कयूं ऐं उन खां हाल वल वठूं ऐं जेको मरीज़ खां पुछण वञे थो इहो बि बहितर अमल आहे, हुन जी अधु बीमारी ख़तम थी वेंदी आहे। कोशिश कयूं त जेके बीमार आहिनि, जेके बि परेशान हाल आहिनि, उन खां हाल वठण हाल अहिवाल ज़रूरी आहे। ख़ासि करे उन मरीज़ खां जेको बीमार आहे उन खां पुछण बि तमामु ज़रूरी आहे।

जी साईं जा जेके दोस्त असांजो ॿिनि कलाकनि जो साथ ॾियनि था ऐं अॼोके दौर में वक़्तु कढी कंहिंजो साथ ॾियणु तमामु वॾी ॻाल्हि आहे ऐं दोस्तनि जी महिरबानी आहे जेके असांजो ॿिनि कलाकनि ताईं प्रोग्राम ॿुधनि पिया लख कुर्बान हुननि जा ऐं असांजे प्रोग्राम में शामिल थियण लाइ पंहिंजा नाला लिखाइनि पिया जंहिंमें यासमीन मलिक आहे मीरपुर ख़ासि खां ऐं फ़क़ीर महरम जतोई आहे ॻोठु आगा ख़ान जतोई खां आसफली चाचड़ वासफली बुगटी लाड़काणे खां लुकमान मरी मोहम्मद अमीन मरी सतार मरी हालेपुटा स्टाफ खां ऐं चनेसर बेहण आज़ाद बेहण मोरे खां ख़ालिक लाशारी मीरपुर ख़ासि खां वकार अली जुणे जो इकरार अली जुणे जो अबरार अली जुणे जो ॻोठु ठुल जुणे जो खां ऐं कुर्बान अली ख़ासिके लिए आहे झंडो मरी खां सोराब मंगरियो फरहान मंगरियो नज़र मोहम्मद मंगरियो ॻोठु सचेरणो मंगरियो लॻे बकापुर खां असदुल्ला जुणे जो तौकीर अहमद जुणे जो बेबी अबिया फातिमा ऐं अजवा फातिमा ॻोठु ठुल जुणे जे खां सभिनी जी वॾी महिरबानी नगमो कयूं पिया अव्हां जे नां ख़ूबसूरत गॾिजी ॿुधूं पिया।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज। ओ पिता जा पिताई
1: खूबसूरती चाहिए तो आरसी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके और दे
2: खूबसूरती जो सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो सिर्फ बिंदी हन में खत्म कुदरती डी स्किन असली ग्लो हर डी एडिशनल पाकिस्तान।
0: अभी बुधो प्या जी मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM सिंध जो आवाज
2: advertising or

उन शाम जो हर मौसम में पर जे करे उनत जे के जको आबहवा असां पंहिंजे मिठड़े हिन प्यारे मुल्क में उन जे लाइ असां घणे खां घणा वण पोखियऊं त उन में असांजो हिकिड़ो फ़ाइदो तमामु घणो आहे त असां में उनजो जेको मेहनत आहे असां जेका वण असांखे पंहिंजो पैसो बि कमाए ॾियनि था ईअं न आहे त को वणनि मां असांखे को फ़ाइदो कोन्हे त कोशिशि कयूं असांजो हिन वक़्तु ज़मीन जेको आहे त वण

भितिन में वरी चंड उभरिया जॾहिं खां भितिन में वरी दीद अटकी असांजी दरिन में वरी नेण जाॻिया त रोशन शहर थी पियो ख़्याल फाटा वञी दिल लॻिन में वरी ही रुखियूं रक़्स थी मौज में झूमंदियूं आण मुंहिंजा तसवर अखियुनि में वरी प्यार खे पाप समझी कुठाऊं हिते लाश उछले विया खजन में वरी आऊं आकाश शायर न मरंदुसि कॾहिं आऊं उभरी पियो ईंदुसि कतन में वरी चंड उभरी पिया जॾहिं खां भितिन में वरी दीद अटकी असांजी दरिन में वरी।

0: GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: सिंध के माथे का झूमर
3: GAFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: तू तो मेरा फैन।
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंधु जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
2: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

दरिया सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: देखिए सवाले इश्क, सुनहरी तितलियाँ और अपने फेवरेट टर्किश ड्रामास ड्रामा सेंट्रल के यूट्यूब चैनल पे।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए FM की आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
5: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
4: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो, बुदंदा।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 12 PM. This time check is brought to you by
3: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
4: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN.
5: सऊदी अरब पाकिस्तान ऐं तुर्किया जो सरबराह इजलास अॼु थींदो। गॾियल दिफ़ाई मुआहिदे ते सहियूं कयूं वेंदियूं। सऊदी वलीअहद जी दावत ते वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ऐं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जदा में मौजूद। तुर्किया जो सदर रजब तैयब उर्दगान बि अॼु सऊदी अरब पहुचंदो। टे मुल्की सरबराही इजलास में खिते जी सूरतयाल समेत ॿिनि तरफ़नि लागापनि ते ॻाल्हियूं कयूं वेंदियूं। खिते में अमुन जे क़याम लाइ थींदड़ कोशिशुनि जो बि जाइज़ो वरितो वेंदो।

आहे त दिल ते पत्थर रखी कब्र कुशाई जो फैसलो कयो हो, रात जी उंधाई में फैसलो तब्दील कयो वियो। आईजी ते भरोसो नाहे। मीर रज़ा जे वालिद मीर हसन चयो आहे त कुझ बि थी वञे पोइ ते न हटंदसि। चवनि था 3 करोड़नि जो मसलो हो, ॿुधायो वञे कंहिंखे बचाइण जी कोशिश थी रही आहे। जंहिं बोर्ड ते असांखे एतमाद आहे हुन खां ई पोस्टमार्टम करायो वञे। मियां साहब वेझो पुराणे तकरार तां चांडिया ऐं मारफाणी बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में झेड़ो। धनार कतल गोट रईस करम चांडियो में चांडिया ऐं मारफाणी बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में झेड़ो थियो। हिकु धुर पारां ॿी धुर जे माल फुरण जी कोशिश दौरान मज़ाहमत ते धनार फिदा हुसैन चांडियो खे क़तल कयो वियो। धुरियुनि में तकरार तेज़।

कोटड़ी में मलाह बिरादरी के बिन धुरन में थियल झेड़े जो जख्मी फोत फारसन जो लाश रखी धरणो जिम्मेवार खिलाफ कार्रवाई जो मुतालबो चार ऐं अग मलाह बिरादरी के बिन धुरन में झेड़े दौरान जख्मी थियल इब्राहिम मलाह फोत थी फोती नौजवान के वारिस औरतन ए मर्दन कोटड़ी थाने आडो लाश रखी धरणो हो जवाबदार गिरफ्तार करण जो मुतालबो।

कंदकोट में कौमी अवामी तहरीक जी रैली सिंध में सूबन जे क़याम जी मुखालफत अॻवाणन चयो त सिंध में नवन सूबन वारा बयान मज़म्मत जोगा आहिनि। सिंध सदियुनि खां हिकु हुई ऐं हिकु ई रांदी, कंहिंखे बे सिंध टोड़न न ॾींदासीं। नवन सूबन वारो फ़ैसिलो वापसि वठी नफ़रत पखेड़णु बंदि कई वञे। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में महांगाई ख़िलाफ़ जमायत इस्लामी जो एहतजाज। फेज़गंज में जमायत इस्लामी पारां महिराण हाईवे खां रैली कढी पका चांग में धरणो आयो।

0: सोलर एंड बैटरी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कहीं मारू डुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो नहीं।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो, उधर

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: देखिए ड्रामा सीरियल एक मोहब्बत और पीर और मंगल रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: ये

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by
1: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे. अस्करी बैंक.
2: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
0: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज.

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
3: Fakiri Dex Ointment.
4: Tez aaram, muasir hifazat aur qabile aitmad mayar.
3: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
5: Ab aap sunenge GFM network par.
6: शरीफ एफिल मार्शल आसिम मुनीर जदा में मौजूद तुर्किया जो सदर रजब तैयब उर्दगान भी अज सऊदी अरब पहुंचन तो टिन्ही मुल्क सरप्राइज इजलास में खिते की सूरत हाल समेत बिन तरफन लागापन से गाल क्यूं खिते में अमुन के क्याम लायद कोशिश जो भी जायजो वरतो वो सऊदी अरब के दौरे ते मौजूद वजीर आजम शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल एमएन मके शरीफ ने उम्रो अदा कयो। पाकिस्तानी वफद कतुला जी ज्यारत भी कई। उम्रो अदा करण बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर एमएन मेंबर्स मुल्क कौम जी तरक्की मुसलमान की सलामती लाए दुआ भी घुरी।

सिक्योरिटी फोर्सेज जा केरी जे में ऑपरेशन 10 खारजी दहशतगर्द मारजी वया। एसपीआर मौजूद रखण वजीरिस्तान जे इलाके आजम बख्श में ऑपरेशन कयो वियो। सिक्योरिटी फोर्सेज जी चेक पोस्ट ते हमले में मुलविस 8 खारजी दहशतगर्द मारजी वया। इलाके

जे वालिद मीर हसन चयो आहे त कुझ बि थी वञे पोइ हिते न हटंदसि। चवनि था 3 करोड़नि जो मसलो हो, ॿुधायो वञे कंहिं खे बचाइण जी कोशिश थी रही आहे? जंहिं बोर्ड ते असां खे एतमाद आहे उन खां ई पोस्टमार्टम करायो वञे। मिया साहब वेझो हथियारबंदन जो ॻोठ ते हमिलो, हिकु ॼणो क़तल। ॻोठ रईस करम चांडियो ते हथियारबंदन हमिलो कयो। फायरिंग जे नतीजे में फिदा हुसैन चांडियो मारिजी वियो। मक़तूल जे वारसनि मूजिबि मारफाणी धुर जे हथियारबंदन ॻोठ ते हमिलो करे नौजवान खे क़तल कयो आहे ऐं मेहू बि काए विया आहिनि, नोटिस वरितो वञे। पुलिस चयो आहे त वाकियो चांडिया ऐं मारफाणी बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में हलंदड़ तकरार जो नतीजो आहे। पीर जो ॻोठ भरसां कानर बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में फसल जी भेर सां झेड़ो, हिकु ॼणो क़तल। ॻोठ उमर कानर में कानर बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में झेड़ो थियो। फायरिंग दौरान गोलियूं लॻण जे नतीजे में अब्दुल मजीद कानर क़तल थी वियो, हिकु ॼणे जे क़तल बाद धुरियुनि में तकरार तेज़ थी वियो।

कोटड़ी में बाला बिरादरी के बिन धुरी में थियल झेड़े जो जख्मी फोत वारसन जो लाश रखी धरणो जिम्मेवार खिलाफ कार्रवाई जो मुतालबो चार ढी अग मला बिरादरी के बिन धुरी में झेड़े दौरान जख्मी थियल इब्राहिम मला फोत थो हो फोती नौजवान के वारिस औरतन ए मर्दन कोटड़ी थाने आडो लाश रखी धरणो हो जवाबदार गिरफ्तार करण जो मुतालबो कंदकोट में कौमी अवामी तहरीक की रैली सिंध में सूबन के कयाम के मुखालफत अगवाणन सिंध में नवन सूबन वारा बयान मज़म्मत जोगा सिंध सदिन का एक हुई एक ही रांदी कें भी सिंध टोड़न न डींदी नवन सूबन वारो फैसलो वापस वठी नफरत पखेड़ बंद कई वे सिंध के मुख्तलिफ़ शहर में महंगाई खिलाफ जमायत इस्लामी जो एहतजाज फैज़गंज में जमायत इस्लामी रैली कड़ी धरणो आयो मिठी में भी जमायत इस्लामी जो एहतजाज छाछरो वेझो घोट रतन जो तड़ में रहमा समय जा बिरादरी में प्लाट की मालिकियत तकरार तेज रहमा बिरादरी माण्हुनि जो उमरकोट छाछरो रोड ते धरणो इंतजामिया का नोटिस वठण जो मुतालबो मुजाहिरन चयो त प्लाट बाबत अणधुरी जांच करे इंसाफ कयो वञे ॿी सूरत में एहतजाज जारी रहंदो

थाईलैंड के राजधानी बैंकॉक में शागिर्द के स्कूल में फायरिंग पंज उस्ताद मारजी वया पुलिस मौजूद नाए क्लास के शागिर्द डाडी ए डाडे के कत्ल करण बाद स्कूल में पंजन उस्तादन के निशानो बनायो। वाके बाद हमलो कंदर शागिर्द पान के भी आपघात करे छो। वाके में मारजी वेल मानून जो मजमू अंग अथ है।

0: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमाम पखनि जे मुक़ाबले।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by.
3: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम, अब आपकी खूबसूरती का फैन। वाइट एज ब्यूटी क्रीम,

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
2: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 2 PM. This time check is brought to you by
3: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द सोजन वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

सऊदी अरब, पाकिस्तान ऐं तुर्किया जो सरबराही इजलास अॼु थींदो। टिन्ही मुल्कनि पारां गॾियल दिफ़ाई मुआहिदे ते सहियूं कयूं वेंदियूं। सऊदी वली अहद जी दावत ते वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जद्दा में मौजूद। तुर्किया जो सदर रजब तैयब उर्दगान बि अॼु सऊदी अरब पहुचंदो। टे मुल्की सरबराही इजलास में खिते जी सूरतहाल समेत ॿिनि तरफ़नि लागापनि ते ॻाल्हियूं कयूं वेंदियूं। खिते में अमुन जे क़याम लाइ थींदड़ कोशिशनि जो बि जाइज़ो वरितो वेंदो। सऊदी अरब जे दौरे ते मौजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल ऐं ॿियनि मके शरीफ में उमिरो अदा कयो। पाकिस्तानी वफ़द अब्दुल्ला जी ज़ियारत बि कई। उमिरो अदा करण बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर ऐं ॿियनि मेंबर्स मुल्क ऐं क़ौम जी तरक़ी ऐं मुस्लमाननि जी सलामतीअ लाइ दुआ बि घुरी। अमेरिका हथियारनि में घटिताई वारी ख़बर मीडिया ताईं कीअं पहुती आहे? अमेरिकी सदर ट्रम्प जांच जो हुकुम ॾेई छॾियो। अमेरिकी अख़बार वाले

डायरेक्टर जनरल जी रिपोर्ट मूजिब हथियारनि जे ज़खीरे में घटताई वारियूं ख़बरूं लीक थियण ते सदर ट्रम्प परेशान आहे। काबीना इजलास दौरान ऐं वेझनि साथियुनि सां बि ट्रम्प नाराज़गी ज़ाहिर कई आहे। अमेरिका वधीक ड्रामा करण बदिरां हक़ीक़तूं तस्लीम कंदे कयल वायदा पाड़े ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ चयो आहे त धमकियुनि खां डिॼण वारा न आहियूं। अमेरिका खे हाणे हिक

0: वारसन जे एतराज़ बाद वापारी मीर रज़ा जी कबर कुशाई मुल्तवी। वकील जबरान नासिर चयो आहे त दिल ते पत्थर रखी कबर कुशाई जो फैसलो कयो हो, रात जी ऊंदाही में फैसलो तब्दील कयो वियो आहे। आई जी ते भरोसो नाहे। मीर रज़ा जे वालिद मीर हसन चयो आहे त कुझ बि थी वञे पोइ ते न हटंदसि। चवनि था 3 करोड़नि जो मसलो आहे, ॿुधायो वञे कंहिंखे बचाइण जी कोशिश थी रही आहे। जंहिं बोर्ड ते असांखे एतमाद आहे उन खां ई पोस्टमार्टम करायो वञे। मियां साहब वेझो हथियारबंदनि जो ॻोठ ते हमिलो, हिकु ॼणो क़तल। ॻोठ रईस करम चांडियो ते हथियारबंदनि हमिलो कयो। फायरिंग जे नतीजे में फिदा हुसैन चांडियो मारिजी वियो। मक़तूल जे वारसनि मौजूद मारफाणी धुर जे हथियारबंदनि ॻोठ ते हमिलो करे नौजवान खे क़तल कयो आहे ऐं मेहू बि काए विया आहिनि। नोटिस वरितो वञे। पुलिस चयो आहे त वाकियो चांडिया ऐं मारफाणी बिरादरी जे ॿिनि धुरनि में हलंदड़ तकरार जो नतीजो आहे। पीर जो ॻोठ भरिसां कानर बिरादरी में फसल जी भेल तां झेड़ो, हिकु ॼणो क़तल। ॻोठ उमर कानर में कानर बिरादरी जे ॿिनि धुरनि में झेड़ो थियो। फायरिंग दौरान गोलियूं लॻण जे नतीजे में अब्दुल मजीद कानर क़तल थी वियो। हिकु ॼणे जे क़तल बाद धुरनि में तकरार तेज़ थी वियो। मेहड़ भरिसां 3 ॿार पाणीअ जी खॾ में ॿुॾी विया, ॿिनि खे बचायो वियो। हिकु ॿार ॿुॾी फोत वियो आहे, लाश हथ कयो वियो आहे। ॻोठ ज़ोरामाछी में 3 ॿार ॿुॾी विया, 5 वरनि जी सभा जो लाश हथ कयो वियो। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में नौजवान खलील शर जी मुबैन अगवा खिलाफ़ दाख़िल दरख़्वास्त ते ॿुधणी। SSP नौशेरो फेरोज रोहल खोसो अदालत में पेश, महीने जी मोहलत ॾियण जी इस्तदा। अदालत SSP खैरपुर अमीर सऊद मंगसीअ खे बि ईंदड़ ॿुधणीअ ते तलब करे वरितो। दरख़्वास्त गुज़ार मौजूब खलील शर खे मजदूरी बहाने घुराए अगवा कयो वियो हो। कराची में गैर कानूनी फॉरेन एक्सचेंज ऐं हवाला हंडी में पुलिस 3 जवाबदार गिरफ़्तार। गुलशन इक़बाल में परडे करंसी जी ख़रीद ऐं विकरे जे इल्ज़ाम हेठि सैयद आतिफ़ अब्बास ज़ेदीअ खे गिरफ़्तार कयो वियो। FIA तर्जुमान मौजूद जवाबदार वटां 23,000 डॉलर, 45,000 रियाल, 1,11 करोड़ ईरानी रियाल ऐं 33 लख रूपियनि समेत ॿियो सामान बेहद कयो वियो। बहादुराबाद में कार्रवाई दौरान इल्ताफ़ थींदी ऐं संदसि साथी खे गिरफ़्तार करे कब्ज़े मां 1 करोड़ रूपया हथ कया विया। कोटड़ी में मल्हा बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में थियल झेड़े जो ज़ख़्मी फोत, वारसन जो लाश रखी धरणो। ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई जो मुतालबो। 4 ॾींहं अॻु मल्हा बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में झेड़े दौरान ज़ख़्मी थियल इब्राहिम मल्हा फोत थियो। फोती नौजवान जे वारिस औरतनि ऐं मर्दनि कोटड़ी थाणे आॾो लाश रखी धरणो हयो। जवाबदार गिरफ़्तार करण जो मुतालबो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज। बुधंदा रहो।

0: के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सॉप,
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: अब आप सुनेंगे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

ते भेट ओम खे पाक को सलायतन ए कुर्बानन ते फखर आहे। मेडिकल बोर्ड में तब्दीली थे वारसन के एतरारी मीर रजा की कब्र कुशाई मुलतवी। वकील जबरान नासिर है त दिल से पत्थर रखी कब्र कुशाई जो फैसलो कयो हो। रात की ऊंदाई में फैसलो तब्दील कयो वयो। आईजी ते भरोसो नाहे नंथा मसलो हो। बुधायो वञे कंहिंखे बचाइण जी कोशिश थी रही है जंहिं उन खां ई पोस्ट

पीर जो ओढ़ भिन में फसल जे भेल तां झेड़ो एक जनो कतल गो ने कारण बरादरी जे बिन भिन में झेड़ो थे ने अब्दुल मबारक करार तेज थी वयो। नेहड़ भरसा टे बार पानी जे खड में बुडी बुडी फोत थी वयो। लाश हथ गोट जोर बार बुडी वया। पंज वरन जी सभा जो लाश हथ कयो वयो। संजो कोटड़ी पुल ते

0: रहे थे एम नेटवर्क पर।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी हो, जीएसटी 1.0।
2: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है, जीएफएम 88.9 सिंध।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां जिसके मिनरल्स स्किन को फिट बनाए से मिले निखार ताजगी के साथ व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन का राज
1: हर दिन

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 4 PM. This time check is brought to you by
3: Fakiri Dex Ointment.
4: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबले एतमाद मयार।
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
5: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
6: आवाज धरती जिसकी फजाओं में रची बसी है, बन के मोहब्बत का साज। GFM 88 की आवाज।
7: GAFM 88 Network, सिंध की आवाज।
5: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News।
8: मुआहदे ते सयूं कयूं आहिनि, मुआहदे ते टिनि मुल्क दिफ़ाई सहकार खे हथी ॾींदा। मुआहदे तहत कंहिं बि हिकु मुल्क ते हमिलो, टिनि मुल्कनि ते हमिलो तसवुरु कयो वेंदो। मुआहदे जो मक़सदु टिनि मुल्कनि जे दिफ़ाई निज़ाम खे मज़बूत बणाइण आहे। अमेरिकी हथियारनि में घटिताई वारी ख़बर मीडिया ताईं कीअं पहुती? अमेरिकी सदर ट्रम्प जांच जो हुकुम ॾेई छॾियो। अमेरिकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल जी रिपोर्ट मूजिबि हथियारनि जे ज़खीरे में घटिताई वारियूं ख़बरूं लीक थियण ते सदर ट्रम्प परेशान आहे। काबीना इजलास दौरान ऐं वेझनि साथियुनि सां बि ट्रम्प नाराज़गी ज़ाहिर कई आहे। अमेरिका वधीक ड्रामा करण बदिरां हक़ीक़तूं तस्लीम कंदे कयल वायदा पाड़े। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालेबाफ चयो आहे त धमकियुनि खां डिॼण वारा न आहियूं। अमेरिका खे हाणे हक़ीक़तूं तस्लीम करण घुर्जनि, जंग बंदी बाबति कयल वायदा पाड़े। नवाज लीग आज़ाद कश्मीर में हुकूमत ठाहींदी। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत ठाहिण लाइ 23 सीटूं घुर्बल हूंदियूं आहिनि। नवाज लीग 24 सीटनि ते कामयाब थी चुकी आहे। आज़ाद कश्मीर जे इलाइक़े में हवेली में चूंड जलसे खे ख़िताब कंदे राणा सनाउला चयो त आज़ाद कश्मीर में हाणे तरक़ीअ जो दौर शुरू थींदो। नवाज लीग वधीक कामयाबी माणींदी। सिक्योरिटी फोर्सिस जा KPK जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में ऑपरेशन। 10 ख़ारजी दहशतगर्द मारिजी विया। SBR मौजूद ॾखण वज़ीरिस्तान जे इलाइक़े आज़म वक्स में ऑपरेशन कयो वियो। सिक्योरिटी फोर्सिस जी चेक पोस्ट ते हमले में मुलविस 8 ख़ारजी दहशतगर्द मारिजी विया। देर में कार्रवाई दौरान ॿिनि दहशतगर्दनि खे जहनम भेड़ो कयो वियो। सदर आसिफ ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ऐं ॿियनि पारां फोर्सिस खे कामयाब कार्रवाई ते भेटा पेश। शहबाज शरीफ चयो त क़ौम खे पाक फ़ौज सलाहियतनि ऐं क़ुर्बानीनि ते फ़ख़्रु आहे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
3: GAFM 91.6।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।

0: It's 4:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं. आर्च ब्यूटी क्रीम एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रोबीट्स फॉर्म 2 दिन में डार्क और दे कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो.
3: ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सुंदर जो आवाज.
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
3: सुंदर जो आवाज बुधंदा रहो.

0: देखिए सवाले इश्क, सुनहरी तितलियाँ और अपने फेवरेट टर्किश ड्रामास ड्रामा सेंट्रल के यूट्यूब चैनल पे।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए FM की आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
3: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
5: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ जी FM 88 नेटवर्क ते।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 5 PM. This time check is brought to you by
3: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द सोजन वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
5: वजीर आजम शाहबाज शरीफ ए तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान मक्का दिफाई मुआहदे ते सहियूं कयूं। तॾहिं ई खाते चयो आहे त मुआहदे तहत टई मुल्क दिफ़ाई सहकार खे हथी ॾींदा। मुआहदे तहत कंहिं बि हिकु मुल्क ते हमिलो टिनी मुल्कनि ते हमिलो तसवुरु कयो वेंदो। मुआहदो जो मक़सदु टिनी

उन्हनि जी उबती गणप शुरू थी चुकी। वॾा वॾा माण्हू बि चई रहिया आहिनि त हुकूमत वञण वारी आहे। हुननि खे भुल आहे त आज़ाद कश्मीर में संदन हुकूमत ठहंदी। आज़ाद कश्मीर जे ज़िले बाग में चूंड जलसे खे ख़िताब कंदे पीपुल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त नून लीग जो हिकु हिसो वज़ीर आज़म खे इतिहादनि सां बि विढ़ाइण चाहे थो। जेको मुल्क वज़ीर आज़म खे अख़्तियार ॾियण लाइ तयार नाहे, उहो कीअं नवनि यूनिट्स या सूबनि जी ॻाल्हि करे सघे थो? अवाम ते एतमाद न कंदड़ मुल्क ते अवाम कीअं एतमाद करे सघे थो? गुड गवर्नेंस अवाम ते एतमाद सां ई बहाल थी सघे थी। अमरीकी हथियारनि में घटिताई वारी ख़बर मीडिया ताईं कीअं पहुती? अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प जांच जो हुकुम ॾेई छॾियो। अमरीकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल जी रिपोर्ट मूजिबि हथियारनि जे ज़खीरे में घटिताई वारियूं ख़बरूं लीक थियण ते सदर डोनाल्ड ट्रम्प परेशान आहे। काबीना इजलास दौरान वेझनि साथियुनि सां बि ट्रम्प नाराज़गी ज़ाहिर कई आहे। अमरीका वधीक ड्रामा करण बदिरां हक़ीक़तूं तस्लीम कंदे कयल वायदा पाड़े। ईरानी पार्लियामेंट बाक़िर कालिबाफ चयो आहे त धमकियुनि खां तस्लीम करणु घुर्जनि। जंगबंदी बाबति कयल वादा

0: मियां साहब भरसा में हूं फुरण दौरान मज़ामत हथियार बंद नथा हमले में कत्ल थियल धनार जे वारसन जो लाश रखी धरणो ॻोठाणन शिकारपुर जेकबाबाद रोड ते मकतूल फिदाउ हुसैन चांडियो जो लाश रखी धरणो हयो एमपीए बुरहान चांडियो जी मदाखलत ते धरणो खत्म कयो वियो वारसन जो चवण हो त मारफाणी धुर ॻोठ ते बेगुनाह हमलो करे नौजवान खे क़तल कयो मेहू बि काहे विया आहिनि जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे मेहू मोटायूं वञनि पुलिस मूजिबि वाकियो चांडिया ऐं मारफाणी धुरनि में हलंदड़ तकरार जो नतीजो आहे।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।

0: It's 5:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: Sindh ki ho to aawaz bhi Sindh ki hai.
4: जिंदगी के साथ साथ होया लंबियां जुदाइयां हम जो मुक गए ने सारे आहा समझ गए कि मैं कौन सा गाना चलाने वाला हूँ। तो जनाब मैं आपका आपके लिए प्यारा सा गाना चला रहा हूँ, तो इस गाने को सुनिएगा, सुनते रहिएगा GFM AT8 नेटवर्क से। आपका अपना शो है जनाब, आई लव यू ऑल विद अशफाक नियाजी। 7 बजे तक हम आपके साथ रहने वाले हैं, कहीं छोड़ के मत जाइएगा। मौसम वैसे भी आज का थोड़ा सा नॉर्मल शॉर्मल हुआ है, गर्मी भी है लेकिन टेम्परेचर है 39 सेंटीग्रेड, और 39 सेंटीग्रेड के साथ ये मौसम चल रहा है जो जिसकी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। तो जनाब इस मौसम के साथ इस जबरदस्त से जो है हमारे गाने शाने को भी आप एंजॉय करें जो कि हम आपके लिए प्ले कर चुके हैं। तो सुनिए सुनते रहिए जी एफएम 88.9 से आपका अपना शो आई लव यू ऑल विद अशफाक नियाज़ी।

0: जी जना वेलकम बैक होया नबिया जो दाइयां हां जो मुक गए ने सारे, क्या बात है जना। बहुत प्यारा सा गाना आपकी समाचों की नजर की और आपने बहुत सुना, बहुत अच्छा लगा। अब जनाब बिल्कुल कोई और बात किए लेते हैं जनाब, आपकी लाइव कॉल देखते हैं कि लाइन शाइन पर हमारे साथ कौन आने वाले हैं। आपने पहले पहले कॉल को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी मुझे लगता है आवाज नहीं आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: जी अदा केर असा सबनी सा गरे किथा पे गलायो?
1: भाई मैं हबीबुल्ला सोलंगी तो गला हटड़ी गुलाम
0: शाह। हबीबुल्ला सोलंगी साहब फ्रॉम हटड़ी गुलाम शाह, केड़ा हाल चाल है हबीबुल्ला साहब?
1: खैर अशफाक भाई केड़ा हाल, खुश आयो?
0: सफा मस्त मौला। तमा यो बुधायो ता हटड़ी गुलाम शाह सफा कियो लगो पियो आहे?
1: हां फस्ट क्लास लगो पा भाई।
0: मजे में?
1: हां मजे में।
0: अच्छा जबरदस्त।
1: हां बियो खैर आ साईं, खुश आयो?
0: जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। छा कंदा आयो दा हबीबुल्ला?
1: अच्छा साईं जो हार पो कंदा हूं ये वणन जो फसल आ।
0: अच्छा अच्छा अच्छा हार पो कंदा आयो?
1: हां साईं।
0: सही सही सही मजे आ। तमना किए ता जो हार पो ले तो?
1: जी जी
0: हार पो किए ले तो ता जो
1: भलो तो ले साईं।
0: अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। यो बुधायो केडो गानो बुधन चाहो था आज?
1: अच्छा साईं समन मीरा जो बुधन चाहियो।
0: केडो?
1: तितर जाते यार बोलन शाम सुबड़ी।
0: तितर जाते यार बोलन,
1: यार बोलन शाम सुबड़ी हलता हलम यार भाई घुमण कचेरी।
0: हाय हाय हाय हलता हलम यार भाई यार कचेरी। वाह वाह वाह। तो कचे में छा हुंदो जो मानु कचे में घुमण विदा है?
1: बस कचे में सही मजुआन उन्होंने कर घुमण विदा।
0: अच्छा सही सही मुझे समझ में ना आई था कचे में छा हुंदो जो मानु चवंदा कचे में घुमण लऊं कचे में घुमण लऊं।
1: कचे में
0: माने सावक हुंदिया हवा हुंदिया है ना बेला हुंदा है ये ना?
1: जी जी।
0: अच्छा अच्छा सही सही। तो कहीं नाले करना चाहो?
1: माजा भाई जमील अहमद सोलंकी, अब्दुल गनी सोलंकी, रफीक सोलंकी, बाबर के नाले जो बुधंदा संगत इन नाले।
0: अच्छा अच्छा अच्छा सही सही सही सही सही
1: ठीक है मेहरबानी।
0: साथ बहुत प्यारे से हमारे हबीबुल्ला भाई फ्रॉम हटड़ी और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमारा नंबर जनाब नोट डाउन कीजिए 03001134888।

0: तो मेरा फैन।
1: White Age Beauty Cream 5-Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। White Age Beauty Soap से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। White Age Beauty Cream, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: छा तमाम भी पैंजो ख्वाबन जो घर ही के अहड़ी जाए ते ठाण चाहियो था, जिते हुजे तहफुस, जदीद सहूलतूं ऐं मंजूर थियल सिक्योरिटी।
3: तपोए भली कार हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर में,
2: सखर शिकारपुर रोड ते,
3: डॉक्टर जियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी जी बिल्कुल सामूं,
2: सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पारां मंजूर थियल
3: एक शानदार ऐं काबिले एतमाद रिहायशी मंसूबो।
2: हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर,
3: रिहायशी प्लॉट 80-120 150 ऐं 200 गज जा,
2: ऐं कारोबारी मौके लाइक कमर्शियल प्लॉट 50 गज ऐं 600 गज।
3: हिते तव्हां खे मिलन थियूं जदीद सहूलतूं,
2: साफ मिठो पाणी,
3: बिजली, गैस,
2: 24 कलाक सिक्योरिटी,
3: मस्जिद, पार्क, स्कूल, बाउंड्री वॉल ऐं सभ खां वॾी ॻाल्हि, ही मंसूबो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जी वेझो आहे,
2: जेको रिहाइश ऐं सीड़पकारी ॿिन्ही लाइ बहितरीन मौको बणाए थो।
3: अॼु ई पंहिंजे प्लॉट जी बुकिंग करायो,
2: फौरी कब्ज़ो ऐं फौरी रजिस्ट्री।
3: कॉन्टेक्ट
2: 03-00-93-17-252
3: and 03-13-27-57-860. Husaini Manzil Housing Scheme Sakhar.
2: Tamase Mehfooz Mustaqbal and Behtareen.
4: Sindh ki ho to aawaz bhi Sindh ki hai. GFM 88 Network.
5: GFM 88 Network.
4: Sindh ki aawaz.

दिन हर पहर जिंदगी की लहर जीएफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: वाओ यार जबरदस्त सॉन्ग तव्हांखे ॿुधायो से पंहिंजे शो आई लव यू ऑल में। अशफाक न्यारी तव्हां सभिनी दोस्तनि सां गॾु आहे तव्हांजे पंहिंजे शो आई लव यू ऑल में ऐं जनाब शाम जे 7 बजे ताईं असां तव्हां सां गॾु रहंदासीं, तव्हां असां सां गॾु रहंदो। बिल्कुल जनाब, तव्हां असांखे कॉल बि करे सघो था ऐं जबरदस्त अहिड़ा प्यारा प्यारा गीत बि ॿुधी सघो था। 03001134888 असांजो नंबर आहे जनाब, ऐं बिल्कुल बग़ैर कंहिं हिजाब जे असांखे कॉल कयो जनाब। पता शर्मायो था असां अशफाक सां छा ॻाल्हाईंदासीं ऐं कहिड़ी फरमाइश कंदासीं। त बिल्कुल जनाब, अॼुकल्ह फास्ट फॉरवर्ड दौर थी वियो आहे, तव्हां मूंखे बिल्कुल कॉल करे सघो था। वठूं था शो जी नेक्स्ट कॉल ऐं चऊं था पंहिंजे कॉलर खे अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी जनाब, केर असां सभिनी सां गॾो गॾु?
1: सागर थो ॻाल्हायां।
0: सागर साहब, किथां पिया ॻाल्हायो?
1: सखर
0: खऊं। कहिड़ा हाल चाल आहिनि सागर साहब, छा कंदा आहियो सागर भाउ? छा कंदा आहियो, कहिड़ो कमु कंदा आहियो सागर भाउ? माशाला माशाला माशाला, अॼु त मोकल हूंदी जुमो
1: आहे।
0: अच्छा ॿुधायो त सही, अॼुकल्ह जेका पेट्रोल जी क़ीमत छो चढ़ी वई आहे त माना मोटरसाइकिल माण्हू ठाराइनि था या ईअं चवनि था टेम्परेरी कमु करे ॾे छॾे बाहि ॾे सॼी छा ठाहिरायूं?
1: बाबा पेट्रोल जी क़ीमत भले 300 थी वञे त बि माण्हू त ठाराईंदा ऐं चढ़ंदा कंदा, पर इहो आहे पधो त ॾींदा।
0: अलाह अकबर,
1: बेबस माण्हू छा कंदो, ग़रीब माण्हू छा कंदो? भले हाणे ॾिसो न, कणक ॾिसो तव्हां, भले 100 रुपया
0: त आई आहे। बिल्कुल यार, ज़िंदगी त हलाइणी आहे न, पेट तूं गुज़ारो त करणो आहे न।
1: बेबस माण्हू छा कंदो, बेबस माण्हू अलाह खे भॼाईंदो।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सागर, इहो ॿुधायो त 14 अगस्त जो जेको आहे सीज़न स्टार्ट थी चुको आहे, त मोटरसाइकिलूं ऑल्टर थियण लाइ अचूं, कोई चवे थो त मुंहिंजो जेको आहे साइलेंसर कढी ॾियो। यार प्लीज़ ईअं न कजो, ख़ुदा जो अथव साइलेंसर सभिनी जेका बि अचे न सभिनी खे प्लीज़ खे तलाह ॾियो त इहा साइलेंसर था कढाइनि। कोई अगरि अचे बि सही त प्लीज़ ईअं कजो। परेशान करण ऐं जेका बाजा अची विया आहिनि पौ पौ वारा, ख़ुदा हुननि खे पुॼे त एग्ज़ैक्टली। सागर भाउ, कहिड़ो गानो ॿुधणु चाहियो था?
1: मां गानो रजनीकांत खान साहब ॿुधणु चाहींदुमि, पर थोरो मां ॿुधाईंदुमि।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है कसम चाहे, बहुत खूबसूरत है तेरा।
0: जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है जनाब आपकी, आप तो वाकई काफी सुरीले हैं यार।
1: नाम सागर है सर।
0: सागर नाम का वैसे असर भी पड़ता है ना? नाम का असर पड़ता है आवाज पर, तो आपकी आवाज पर आपका नाम का असर बहुत अच्छा पड़ा हुआ है।
1: सर मुझे गाने का वैसे शौक है, जो सुबह को चलता है ना प्रोग्राम नेम का।
0: जी जी जी जी जी,
1: जिंदगी गुजार है, उसमें मैं सचिन में कॉल करता रहता हूँ, गाने सुनाता हूँ।
0: क्या बात है आपकी, क्या बात है सागर भाई, आप तो बड़े सुरीले हैं। ये बताइए गाना किसके नाम करना चाहते हैं?
1: गाने दोस्त है
0: जी जी,
1: रोशन।
0: अच्छा,
1: शौकत मीरानी
0: जी जी,
1: और रमजान चन्ना
0: जी जी,
1: और मैं खुद प्रेमी सागर।
0: क्या बात है प्रेमी। अच्छा सागर भी ऊपर से प्रेमी भी, क्या बात है। ये तो डबल डबल सुरीले हो गए अपने, सागर भी है प्रेमी भी।
1: निक नेम होना चाहिए लाजमी।
0: हाँ निक नेम सागर भी और प्रेमी भी है, क्या बात है आपका। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारे साथ जनाब प्रेमी सागर भाई और बड़े सुरीले किस्म के सागर भाई हमारे साथ मौजूद थे। तो जनाब अगर आपकी आवाज में भी दम है और आप भी चाहते हैं कि दुनिया आपको सुने, तो आप हमारे साथ आ जाइए, हमारे साथ शो में पार्टिसिपेट कीजिए और जनाब हमें बता दीजिए कि आपकी आवाज में कितना दम खम है। आप हमें कॉल कीजिए, लेते हैं शो की एक और कॉल और अपने कॉलर को नहीं अभी टाइम हुआ चाहते हैं जनाब एक कमर्शियल ब्रेक का। सो गाइज हम कमर्शियल ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं और कमर्शियल ब्रेक के बाद हम आपके साथ साथ हैं, आप हमें छोड़ के कहीं मत जाइएगा। अशफाक के साथ रहेगा शाम के 7 बजे तक।
2: सचल की सरमस्त धरती,
3: फातिमा मेहरान, सिंध की एक और पहचान,
2: GAFM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।
2: था तवां जो ख्वाब आए डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी नर्स या हेल्थ प्रोफेशनल बनजन तो तवां लाए आए एक बेहतरीन मौको सखर जो मोतबर इदारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में इन सेशन लाए दाखिलाओं जारी हैं चार साल जा डिग्री प्रोग्राम्स GBSN GBSM पंज साल जो प्रोफेशनल प्रोग्राम डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी DPD बिन साल जा डिप्लोमा प्रोग्राम्स LHV CM
4: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

अमरीका वधीक ड्रामा करण बदिरां हकीकतूं तस्लीम कंदे कयल वायदा पूरा करे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ चयो आहे त धमकियुनि खां डिॼण वारा नाहियूं, अमरीका के हाणे हकीकतूं तस्लीम करण घुर्जन, जंगबंदी बाबति कयल वायदा पाड़े। आज़ाद कश्मीर में टे मरहले में थींदड़ चूंडुनि जो शेड्यूल तब्दील, बिन ज़िलनि में चूंड मुल्तवी कई वई। आज़ाद कश्मीर जे इलेक्शन कमिश्नर बौंच ऐं सद नौती ज़िलनि में चूंडू मुल्तवी करे छॾियूं। आज़ाद कश्मीर जे इलेक्शन कमीशन मूजिबि हाणे बाग ऐं हवेली ज़िले में टे मरहले दौरान चूंड थींदी, बिन ज़िलनि में चूंड मुल्तवी कई वई आहे। पुराणी शेड्यूल मूजिबि बौंच डिवीज़न जे चइनी ज़िलनि जे 11 सीटनि ते टे मरहले में चूंड थियणी हुई। नवाज लीग आज़ाद कश्मीर में हुकूमत ठाहींदी, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत ठाहिण लाइ 23 सीटूं घुर्बल हूंदियूं आहिनि। नवाज लीग 24 सीटुनि ते कामयाब थी चुकी आहे। आज़ाद कश्मीर जे इलाइक़े हवेलीअ में चूंड जलसे खे ख़िराब कंदे राणा सना चयो त आज़ाद कश्मीर में हाणे तरक़ीअ जो दौर शुरू थींदो, नवाज लीग वधीक कामयाबी माणींदी।

एफपीआर मूजिब दखण वजिस्तान के इलाके आजम वर्सक में ऑपरेशन किया वो सिक्योरिटी फोर्सिस की चेकपोस्ट से हमले में मुलविस 8 खारजी दहशतगर्द मारजी वया। देर में कार्रवाई दौरान बिन दहशतगर्दन के जहन्नम भेड़ो किया वो सदर आसिफ जरदारी वजीर आजम ए बेन पारा फोर्सिस के कामयाब कार्रवाई से भेटा पेश। एंटी करप्शन की अदालत मिल्कियतन में फेरफार करने के इल्जाम में पीपुल्स पार्टी सिंध के सदर निसार कोड़ो खिलाफ जांच जो हुक्म दे छो। डायरेक्टर एंटी करप्शन लाड़काने रीजन के डेढ़ महीने में जांच मुकम्मल कर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। दरख्वास्त गुजार कुर्बान अब्बासी मौके फख्तर कियो तो निसार कोड़ो की चवण से एडिशनल कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तियारकार बेन ऑफिसर मिल्कियतन की रिकॉर्ड में फेरफार कई समूर जिम्मेवार खिलाफ कानून मूजिब कार्रवाई कई वही।

0: It's 6:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
5: सिंध के दिल से निकली आवाज,
4: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6
2: डाक खाने में ऐसा होगा अरे क्या पेट होगा ऐसा कर होगा अरे पोस्ट खाने में वनिया सम यो लेखा हो जी ना रे दबा पुजे यला
3: एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक चौथा तो केंद्र नाथ कहना चाहिए गाना था
2: कुछ दोस्तान बख्तियार अली प्रोसो प्यासी अब्दुल जबार प्रोसो नादर अली गबोल जेके नाला नटा मुखे इतने इन टाइम सबन दोस्तन के मुझे तरफा सलाम अलैकुम कबूल भी करने इंशाल्लाह यो रुकेश था दोस्तन के एफएम बाबा बुध दा क्यों खास करे स्वाद रियाली जो प्रोग्राम खास बुध
3: थैंक यू फॉर योर प्रमोशन
2: जे जे जे जे दोस्तन के करते पाए तो बुध आवाज है यो तो आए बुध आवाज है
3: थैंक यू सो मच जख्मी भाई थैंक यू पांच खास क्या रखिए देख लीजिए जनाब हमारे बहुत पुराने पुराने से लिसनर आते हैं और हमारी प्रमोशन करके चले जाते हैं थैंक यू सो मच जख्मी भाई आप भी हमें कॉल कर सकते हैं जनाब शाम के 7 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा चाय आ गई मगर बड़ी देर के साथ आइए ये बस सीन थोड़ा सुस्त हो जाता है हमारा और पानी भी पिला दी चंदा थैंक यू सो मच जनाब चाय और पानी साथ साथ चलता रहे आप भी चाय पिए एंजॉय कीजिए और साथ साथ पानी भी पिए ठंडे ठंडे मशरूबात पिए और जनाब अपनी जिंदगी को और ज्यादा आसान कर लीजिए टेंशन लेने का नहीं होता जनाब आपके सामने बहुत सारी टेंशन होंगी आपके साथ बहुत सारी टेंशन होंगी लेकिन आप उनको दिल पे मत लीजिएगा उन्हें सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई उपाय जरूर कीजिएगा कोई ना कोई तरीका जरूर इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए अगर आप दिल पे लेंगे और दिल पे लेके लेटे रहेंगे सोए रहेंगे परेशान होते रहेंगे तो ये इस तरह मसले मसाइल हल नहीं होते बल्कि इस तरह बढ़ जाते हैं तो हम लेते हैं जनाब शो की एक और कॉल देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन है अस्सलाम वालेकुम जी मुझे प्यारा मीठा भाकिर अली मदद महर भा केड़ा हाल चाल ठीक ठाक पनिया अखिल वाला सब के हाल में आए माशाल्लाह माशाल्लाह अली मदद भा छा कम कंदा आयो का ताजा कम कार किए था हालन
4: तमाम
3: अच्छा जबरदस्त जबरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह तो बनी बारे जो कम सुठो हले तो तांजो माशाल्लाह जबरदस्त साईं तांखे असन जो प्रोग्राम किए लगन दो आए तांखे खबर हुई तो तांजी कॉल लगी विंदी आज
4: आज लगी विंदी आज पर जी गाद में आज एक नंबर मिली दियो
3: अच्छा वाओ गुड यार जबरदस्त यो बतायो शमन जो गाना तो प्ले किया बिल्कुल मोहब्बत सच्ची जाते हुंदी आ उते कनेक्शन मिली विंदा है मदद भाई यो बुधायो गानो तो हलाया शमन जो कहजे नाले से करना चाहो थैंक यू सो मच अली मदद महर भाई पांचो खास ख्याल रखो ओके हमारे साथ है जनाब अली मदद महर भाई और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं हमारा नंबर है जनाब 03001134888 और जनाब हमारे साथ कुछ लोग हैं नजीर धारेजो शाहनवाज धारेजो रफीक धारेजो गुलशेर धारेजो और शाहिद धारेजो मोहम्मद रशीद धारेजो सिकंदर धारेजो और इसहाक धारेजो तो ये तमाम धारेजो ब्रदर्स हमारे साथ मौजूद है जो कि हमें इस वक्त सुन रहे हैं बड़े गौर के साथ लेते हैं शो की एक और कॉल अस्सलाम वालेकुम
5: वालेकुम अस्सलाम
3: जी जनाब खैर सा सबनी सा गड़ो गड़ो
5: शिकारपुर खान
3: जमालदीन भाई साहब केड़ा हाल चाल ठीक ठाक अलहमदुल्ला बिल्कुल ठीक ठाक मजे में मामा जमालदीन भाई यो बुधायो था शमन जो गानो तो प्ले किया कें जे नाले ते करना चाहियो लास्ट टाइम आयो पोए प्रोग्राम में ताजो मां मुमताज लाशारी गानो हलायो हूं हाँ बिल्कुल गुनगुनाया बिल्कुल वाह वाह जबरदस्त जबरदस्त वाकई अमर जीदल जोर आके जरूर बुधाई इनशाला कोशिश कदासी कें नाले से करना चाहो जरूर जरूर जी जी जी जी बिल्कुल वालेकुम अस्सलाम मामा जमालदीन भाई साहब थैंक यू सो मच
5: बड़ी मेहरबानी
3: थैंक यू हमारे साथ है जमालदीन भैरव साहब और फ्रॉम शिकारपुर आप भी हमें कॉल कर सकते हैं जनाब, कहीं पर भी हैं, अगर कहीं पर भी हमें सुन रहे हैं तो डोंट वरी एट ऑल, आपका नंबर हर जगह से लग जाएगा, बशर्त ये कि आपके पास बैलेंस भी हो, बशर्त ये कि आपका पैकेज भी हो, तो जनाब आप हमें कॉल जरूर कर सकते हैं हमारे नंबर पे जो कि मैं आपको बता रहा हूँ 0300 और 0113488, आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, आइए और हमारे साथ शो में पार्टिसिपेट कीजिए। वेल गाइज, अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं जनाब क्रिकेट की। बिल्कुल जनाब, क्रिकेट तो आप लोग बहुत शौक से देखते ही हैं, लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं वो मेगा इवेंट की बात कर रहे हैं जो कि जबरदस्त टाकरा होने वाला है पाकिस्तान बमुकाबला इंडिया। और एशियन क्रिकेट काउंसिल ने वुमेन्स एशिया कप का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। मेगा इवेंट 28 अगस्त से 13 सितंबर तक दुबई में खेला जा रहा है, जिसमें इवेंट का सबसे बड़ा पाक भारत टाकरा 5 सितंबर को शेड्यूल्ड है। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, थाईलैंड और हांगकांग शामिल हैं। वुमेन्स एशिया कप में पाकिस्तान और भारत समेत 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इवेंट का पहला सेमीफाइनल 10 और दूसरा 11 सितंबर को खेला जाएगा। मेगा इवेंट की चैंपियन टीम का फैसला 13 सितंबर को दुबई में होगा और एसीसी वुमेन्स एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है। तो जनाब ये बड़ा जबरदस्त मैच होने वाला है, बड़ा जबरदस्त एक टाकरा होने वाला है जिसका शिद्दत के साथ इंतजार किया जा रहा है। वुमेन एशियन क्रिकेट काउंसिल का कप है जनाब, और यकीनी तौर पर पाकिस्तान के हिस्से में जीत आनी चाहिए। हम अपनी पाकिस्तानी वुमेन्स को कहते हैं जनाब कि बहुत ज्यादा मेहनत करें और बहुत ज्यादा हिम्मत करें ताकि जनाब आप ये मुआरका भी जीत जाएं और फिर जबरदस्त तरीके से जो है आप जीत कर हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन कर दें, पाकिस्तान की खवातीन का नाम रोशन कर दें। लेकर चुका हूं वेस गुलाबी और जख्मी खादिम हुसैन भाई की फरमाइश पर तमाम लोगों को डेडिकेट जिन जिनकी कॉल्स हमने अभी अटेंड की हैं। तो इस गाने को सुनिएगा और हमारे साथ रहिएगा, इस गाने के बाद हम आते हैं वापस आपके अपने शो आई लव यू ऑल में।

0: It's 6:30 PM. This soundtrack is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए. आर्श ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्श ब्यूटी क्रीम.
2: सचल की सरमस्त धरती,
3: फातिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान.
2: GAFM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज.
4: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में. डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ये कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
5: अपना शहर, अपना घर, मटियारी और मटियारी की आवाज़
6: GFM 91.6.

दीवार जदीद ड्रेनेज सिस्टम और हाँ रोशन स्ट्रीट लाइट्स, वो चीजें जो हमारी बेसिक नीड हैं। बिल्कुल जनाब, हमारी बुनियादी सहूलियात तमाम यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये मंसूबा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल करीब वाके है, जो इसे रिहायशी और सरमायाकारी दोनों के लिए एक सुनहरी मौका बनाता है। तो जनाब देर किस बात की है, आज ही अपना प्लॉट बुक करवाएं और अपने रोशन मुस्तकबिल की तरफ पहला कदम उठाएं। राब्ते के लिए आप जरूर नंबर नोट डाउन कीजिए 9300931725 और 03132757860। हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सकर, आपके महफूज मुस्तकबिल और बेहतर सरमायाकारी का काबिल एतमाद इंतखाब। तो जरूर आप इस को विजिट कीजिए और जनाब अपने बच्चों का और अपना मुस्तकबिल सिक्योर कीजिए। अपने ख्वाबों की जन्नत जनाब आज ही जरूर बुक करवाइए, क्योंकि जनाब हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सकर आपके महफूज मुस्तकबिल की जानिब एक मजबूत कदम है। तो देर न कीजिए और आज ही अपने ख्वाबों का घर बुक करवा लीजिए। वेल 6:00 हुआ चाहते हैं जनाब, 6:37 हुआ जाते हैं, बल्कि 38 मिनट हुआ चाहते हैं। हम चलते हैं आपकी लाइव कॉल्स की तरफ और लाइव कॉल्स लेते हैं और कहते हैं अपने कॉलर को अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जनाब, लगते हैं हमारे कॉलर जो हैं वो सो गए हैं और वो अब हमसे बात नहीं करना चाहते। क्या कुछ ऐसा ही है? नहीं नहीं जनाब, ऐसा नहीं है, शायद कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया होगा लाइन में, या फिर कुछ ऐसा होगा कि जनाब सिग्नल विग्नल नहीं मिल रहे होंगे। आप हमारे साथ मौजूद हैं, आप हमें कॉल भी कर रहे हैं और हमारे साथ बातें शातें भी कर रहे हैं, तो जनाब टाइम बहुत जबरदस्त तरीके से स्पेंड हो रहा है और हम यही चाहते हैं कि जनाब ये टाइम यूं ही बहुत अच्छे तरीके से स्पेंड होता रहे और आप हमारे साथ यूं ही बात करते रहें, क्योंकि हम आपके साथ और आप हमारे साथ मौजूद हैं और यूं ही हमारा और आपका साथ रहेगा ताकि आप कहीं बोर ना हो जाएं। शाम की ठंडी हवाएं और शाम में जबरदस्त तरीके से जनाब आप और हम इस प्रोग्राम आई लव यू ऑल में साथ साथ हैं। आपके मैसेजेस भी शामिल शो करते चलें। जनाब अब्दुल रजाक ने कहा है कि एक बार फिर से सॉन्ग सुनाइए फौजिया सुबरो का। बिल्कुल जनाब बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला मैं जरूर आपको सुनवाने की कोशिश कर रहा हूं सॉन्ग, तो क्यों ना मैं आपको इस वक्त सॉन्ग सुना ही दूं ताकि आपकी फरमाइश भी पूरी हो जाए, ताकि आप ये ना कहें कि यार हमारी फरमाइश पूरी क्यों नहीं करता अशफाक। फौजिया सुमरों का हिदकी और हिदकी आई थिंक, मैं देख लूं एक बार फिर गौर से कि वाकई उन्होंने फौजिया सुमरों का गाना हिदकी कहा था ना, अज हिदकी वारो। ओके अज हिदकी वारो बुदी। तो जनाब इस गाने को सुनिएगा, अशफाक नियाज़ी के साथ रहिएगा और शाम के साथ तक हमारा और आपका साथ रहेगा।

0: 1967।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खत्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क
3: की आप वेलकम बैक वंस अगेन। यही है सिंध की आवाज, जीएफएम 88 नेटवर्क से आपका अपना अशफाक नियाज़ी आई लव यू ऑल शो में। जनाब 6:52 हुआ जाते हैं, देर नहीं करते जनाब, आ गई बहुत ज्यादा लंबी कमर्शियल ब्रेक हो गई शो की। एक और कॉल देखते लाइन पर हमारे साथ, कौन है? अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम
3: जी। जनाब कौन हमारे साथ? आई थिंक रफीक जतोई तो नहीं है कहीं हमारे साथ? हाँ रफीक चवंदा आहिनि तव्हांखे त बिल्कुलु। असां बि तव्हांजी आवाज़ सुञाणे वियासीं जनाब। कुझु माण्हू अहिड़ा हूंदा आहिनि जंहिंजी आवाज़ असांखे यादि हूंदी आहे त माना इहो केरु थो ॻाल्हाए। वरी छा थियो? हलो ओए होए रफीक साहब, काॾे हलिया विया?
4: अचे पियो?
3: हा हाणे थो अचे, हाणे थो अचे। अलहमदिल्ला, तव्हां ॿुधायो कहिड़ा हाल चाल आहिनि? एतिरे अर्से किथे ग़ायब हुयो? अच्छा अच्छा, माशा अल्लाह, ज़माने जा सभु कम करे आया आहियो?
4: खुटनि ई कोन पिया
3: भाई, ज़माने जा कमकार खुटंदे ई कोन इनशाला। ऐं जेको आहे पर माण्हू थोरो टाइम कढंदो आहे पंहिंजे दोस्तनि लाइ, पंहिंजे प्रोग्राम्स लाइ, पंहिंजे आर्टिस्ट लाइ, त जीअं थोरो घणो ॻाल्हाए, थोरो पंहिंजी फरमाइशूं पूरी कराए, त जीअं माण्हू हल्को फुल्को फील करे। कमकार कीअं था हलनि? तव्हांजो खीर जो कमु कीअं थो हले?
4: हा शुक्र आहे, कमु माशाल्लाह भलो थो हले।
3: हा ज़बरदस्त।
4: हा माशाल्लाह।
3: अच्छा, 14 अगस्त अचण वारी आहे, अगस्त जो महीनो हले थो, हिन जे हवाले सां तव्हां कहिड़ियूं तयारियूं कयूं आहिनि?
4: तयारियूं कुझु कयूं आहिनि, कुझु रहियल आहिनि।
3: अच्छा, मोटरसाइकिल ते तव्हां झंडा बंडा हणाया आहिनि? कोई कलर बलर करायो आहे? कोई बेज बेज हयां अथव चए न?
4: हा बिल्कुलु, मोटरसाइकिल हणी छॾियो आहे।
3: हा ऐं सलेंसर कढरायो अथव? सलेंसर मोटरसाइकिल जो कढरायो अथव?
4: न यार, हाणे सिंधरी।
3: वाकई गुड यार, पर तव्हांजी आवाज़ मोटरसाइकिल में बि आवाज़ कंदी हूंदी। घणनि माण्हुनि जी मां ॾिठी आहे जेका खीर खपाईंदा आहिनि, हुनजी भड़ भड़ भड़ भड़ भड़ भड़ भड़ भड़ ईअं आवाज़ कंदी आहे।
4: बिल्कुल वही बाकी हुई, पर हाणे न आहे।
3: हाणे कोन्हे, शुक्र आहे,
4: चेंजिंग अची वई आहे।
3: शुक्र आहे चेंजिंग अची वई आहे। त इहो ॿुधायो रफ़ी, गानो कहिड़ो ॿुधंदव?
4: गानो पूरो कंदी फरमाश।
3: हा बिल्कुलु।
4: ओ रुठ भलो आहे परचण खां,
3: हाय हाय हाय हाय, रुठ भलो परचण खां पोसाईंदो। कंहिं जे नाले था करणु चाहियो? जल्दी कयो त मां इहो गानो हलायां।
4: जेके बि दोस्त ॿुधंदा जिथे जिथे आवाज़ वञनि थो, मुंहिंजो दोस्त अब्दुल्ला नारे जो
3: सही,
4: ऐं जिथे जिथे आवाज़ वञे थो इशफाक नियाज़ी तव्हांजो, सभिनीनि खे रफ़ीक जो इलाही सारा सलाम।
3: वालेकुम अस्सलाम रफ़ीक जो, हाणे बंदि कर त मां इहो गानो हलायां।
4: ख़्यालु रखिजो इशफाक
3: जी। जी
4: ओके,
3: लाफ थैंक यू सो मच। हमारे साथ रफीक जी तो जनाब, और गाना मेरा बहुत फेवरेट है, इस गाने को प्ले कर रहा हूँ, फायजा अली का गाना है। अशफाक नियाज़ी को दीजिएगा इजाजत, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिएगा, कभी किसी का दिल मत तोड़िएगा। जश्न आजादी का महीना है जनाब, और जश्न आजादी में जनाब दिल खोल के खुशियां मनाइए। और जनाब अब तक थोड़ा सखर सजा नहीं है, तो मैं अपनी इंतजामिया से भी गुजारिश करूंगा कि प्लीज प्लीज प्लीज मिलिट्री रोड के अलावा भी पूरा सखर है उसको भी सजाइएगा, और लगे कि हम 14 अगस्त भरपूर तरीके से मना रहे हैं जनाब। तो जल्दी से अपने घरों को सजाइए, गलियों को सजाइए, और इसे जश्न आजादी का जश्न मनाइए। अशफाक नियाज़ी आपके साथ है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अशफाक को दीजिएगा इजाजत, टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल एंड अल्लाह निगेबान।

0: पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त पीपी नून नवन सूबनि बाबति तमाम जी राय खे अहमियत ॾींदी। नवां सूबा ठाहिण अवाम जो फ़ैसिलो आहे त हू गॾु आहिनि, अवाम जो नाहे त इन जी मुखालफ़त कबी। अवाम जे ख़िलाफ़ थींदड़ को बि फ़ैसिलो हरगिज़ क़बूल नाहे। बाग में चूंड जलसे खे ख़िताब कंदे बिलावल भुट्टो चयो त मुल्क में केतिरा ई भेरा आइन टोड़ियो वियो, हाणे चवनि था त निज़ाम तबाह थी वियो आहे। निज़ाम नाकाम नाहे पर हुन खे नाकाम बणायो वियो आहे। अवाम जी हाकमियत तस्लीम करण ताईं सिस्टम न हली सघंदो। नून लीग आज़ाद कश्मीर में हुकूमत ठाहींदी। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत ठाहिण लाइ 23 सीटूं घुर्बल हूंदियूं आहिनि। नवाज़ लीग 24 सीटुनि ते कामयाब थी चुकी आहे। आज़ाद कश्मीर जे इलाइक़े हवेलीअ में चूंड जलसे खे ख़िताब कंदे राणा सनाउल्ला जो चवण हो त आज़ाद कश्मीर में हाणे तरक़ीअ जो दौर शुरू थी चुको आहे। नून लीग वधीक कामयाबी माणींदी। आज़ाद कश्मीर में टे मरहले में थींदड़ चूंडुनि जो शेड्यूल तब्दील। ॿिन ज़िलनि में चूंड मुलतवी कई वई। आज़ाद कश्मीर जे इलेक्शन कमिश्नर भोंच ऐं सुध नौती ज़िलनि में चूंडूं मुलतवी करे छॾियूं। आज़ाद कश्मीर जे इलेक्शन कमीशन मूजिबि हाणे बाग ऐं हवेली ज़िले में टे मरहले दौरान चूंड थींदी। ॿिन ज़िलनि में चूंड मुलतवी कई वई आहे। पुराणी शेड्यूल मूजिबि भोंच डिवीज़न जे चइनि ज़िलनि जी 11 सीटनि ते टे मरहले में चूंड थियणी हुई। हिरसा में चीफ इंजीनियर ऑपरेशन जी मुक़ररी ते नओ तकरार। सिंध जे मेंबर डिपुटेशन ते मुक़ररी वारी तजवीज़ ते एतिराज़ वारे छॾियो। आपाशी खाते जे सेक्रेटरीअ खे ख़त। शफ़क़त हुसैन वेदो चयो आहे त तजवीज़ कयल ऑफिसर वटि आपाशी निज़ाम जी रेग्यूलेशन जो घुर्बल तजुर्बो ई मौजूद न आहे। मेरिट जे बुनियाद ते अहिड़ो ऑफिसर मुक़रर कयो वञे जंहिं वटि आपाशी निज़ाम जी रेग्यूलेशन ऐं पाणी विर्छ जो वसी तजुर्बो हुजे। अमरीकी हथियारनि में घटिताई वारी ख़बर मीडिया ताईं कीअं पहुती। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प जांच जो हुकुम ॾेई छॾियो। अमरीकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल जी रिपोर्ट मूजिबि हथियारनि जे ज़खीरे में घटिताई वारियूं ख़बरूं लीक थियण ते सदर डोनाल्ड ट्रम्प परेशान आहे। वेझनि साथियुनि सां बि डोनाल्ड ट्रम्प नाराज़गी ज़ाहिर कई आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर जीएफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: It's 7:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
0: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज.

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: It's 8 PM. This time check is brought to you by
2: Fakiri NL जैसे क्रीम, दर्द, सोजन, वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN
4: News। इन लाइ कराई हुई हूँ तजी दांदली करे सक जे केन दांदली सेटल इलेक्शन कबूल ना है। नून लीग वारा इन भुल में न रहन ता आजाद कश्मीर में हुकूमत ठाहे वठंदा। یہ نہ سچ کمیشن جوڑن لائے تیار آہن آئیں نئی وری شفاف چونڈو پہ کرائیں۔ کشمیر ہک آہے تا چونڈو بھی ہکی نہیں تھن گرچن تھا۔

Justice.

पाकिस्तान, सऊदी अरब ए तुर्की मां कंहिं हिक ते हमिलो टिन्ही मुल्कनि ते सम्झो वेंदो। टिन्ही मुल्कनि तारीख़ी दिफ़ाई मुआदो करे छॾियो। सऊदी अरब जे शहर मका मुकरमा में टिन्ही मुल्कनि जो सरबराही इजलास में मुआदे ते सहियूं कयूं वयूं। सऊदी वलीअद मोहम्मद बिन सलमान, वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं तुर्क सदर रजब ते बुर्दगान मका दिफ़ाई मुआदे ते सहियूं कयूं। परॾेही वज़ारत जे तर्जुमान चयो आहे त मुआदे तहत टई मुल्क दिफ़ाई सहकार खे हथी ॾींदा। मुआदे तहत कंहिं बि हिक मुल्क ते हमिलो टिन्ही मुल्कनि ते हमिलो तसवुरु कयो वेंदो। मुआदे जो मक़सदु टिन्ही मुल्कनि जे दिफ़ाई निज़ाम खे मज़बूत बणाइण आहे।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: It's 8:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं. आर्च ब्यूटी क्रीम एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम अब आपकी खूबसूरती का फैन. वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंधु जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
2: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारा हो, उधर दारा।

सदर खान चयो आहे त गडियल डिप्यूटी सहकार खे अॻिते वधाइण में मददगार साबित थींदो ऐं सूबनि खे हथी ॾियण सऊदी वज़ीर फैसल आहे त सऊदी पाकिस्तान ऐं तुर्किया जो दिफ़ाई मुआदो टिन्ही मुल्कनि जी तरक़ी ऐं खुशहाली जो सबबु बणजंदो। मुआदे सां इलाक़ा मिलंदी ऐं उन जा

सदर पारां पाकिस्तान तुर्किया ऐं सऊदी अरब विच में गॾियल दिफ़ाई मुआदे जी आजियां। सदर आसिफ ज़रदारी चयो आहे त मुआदो ख़िते में अमुन सलामती ऐं इस्तेहकाम लाइ अहम, जेको टिनी भाइर मुल्कनि जे महफ़ूज़ ऐं खुशहाल मुस्तक़बिल जो अज़म ज़ाहिर करे थो। मुआदे सां टिनी मुल्कनि विच में वधीक मज़बूत थींदो। पाकिस्तान जी दिफ़ाई ताक़त दुनिया ॾिठी ऐं तस्लीम कई आहे। दिफ़ाई मिलाव पर दिफ़ा लाइ हूंदा आहिनि। वफ़ाक़ी वज़ीर अता तारड़ जो पाकिस्तान सऊदीया ऐं मुराद अली

0: अभी बुधोपिया जी ए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: It's 9:45 PM. This time check is brought to you by
1: Al Habib Remit Bank. Al Habib Rishto Bharose Jo
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
3: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
0: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

0: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: It's 10 PM. This time check is brought to you by
3: Fakiri Dex Ointment.

0: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

वापडा भारती आबी जारियत रोकण जो जवाज ॼाणाए टिन सूबनि जी रद्द कयल तकरारी कालाबाग डैम रिथा में साह विझण जो वरितो आहे। तकरारी रिथा अखोड़ी डैम बि वापडा जे हाणोके प्लान डैम ठाहिण जो बि फ़ैसिलो मंगला तकरारी कालाबाग डैम ऐं अखोड़ी डैम समेत ॿियनि रिथाउनि ते सिंध खां हिमायत हासिल करण जूं कोशिशूं। वापडा सिंधु दरिया में कोटड़ीअ खां हेठि वेंदड़ पाणी खे बि ज़ियान करार ॾेई छॾियो। सिंध हुकूमत खां अंग अखर तलब। केटीएन न्यूज़ गुज़िरियल महीने वापडा चेयरमैन जी सदारत हेठि थियल गॾिजाणीअ जाता वापडा अख़्तियारनि मौक़िफ़ अख़्तियार कयो त चनाब भर्ती जारियत वधी रही आहे। ज़रिए मसलो हल करण जो इस्तेमाल थी चुका आहिनि। हाणे भारतीय डैम ऐं पाणीअ सिंध जे आपाशी अख़्तियारनि वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह खे ब्रीफिंग ॾिनी त इजलास में सिंध कंहिं बि मनसूबे जी हिमायत न कई ऐं सभिनी मनसूबनि जा तफ़सील पेश करण जो चयो। इहो बि वाज़े कयो वियो त कोटड़ीअ खां हेठि पुठो थिए डेल्टा जी बका लाइ ज़रूरी आहे।

पाकिस्तान, सऊदी अरब ऐं तुर्कीअ मां कंहिं हिक ते हमिलो टिन्ही मुल्कनि ते समझो वेंदो। टिन्ही मुल्कनि तारीख़ी मका गॾियल दिफ़ाई मुआदो करे छॾियो। सऊदी अरब जे शहर मका मुकरमा में टिन्ही मुल्कनि जे सरबराही इजलास में मुआदे ते सहियूं कयूं वयूं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान मका दिफ़ाई मुआदे ते सहियूं कयूं। परॾेही वज़ारत जे तर्जुमान चयो आहे त मुआदे तहत टई मुल्क दिफ़ाई सहकार खे हथी ॾींदा। मुआदे तहत कंहिं बि हमिलो तसवुरु कयो वेंदो। मुआदे जो मक़सदु टिन्ही मुल्कनि जे दिफ़ाई निज़ाम खे मज़बूत बणाइण आहे।

तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान चयो आहे त गॾियल दिफ़ाई मुआहिदो सिक्योरिटी ऐं दिफ़ाई सहकार खे अॻिते वधाइण में मददगार साबित थींदो। हिन सां गॾियल मनसूबनि खे हथी ॾियण ऐं दहशतगर्दी जे ख़ात्मे में पिण मदद मिली सघंदी। सऊदी अरब जे परॾेही वज़ीर फैसल बिन आहे त सऊदी पाकिस्तान ऐं तुर्किया जो दिफ़ाई मुआहिदो टिनी मुल्कनि जी तरक़ी ऐं खु़शहालीअ जो सबबु बणिजंदो। मुआहिदे सां इलाक़ाई अमुन खे हथी मिलंदी ऐं उन जा मुस्बत असर समूरे खिते ते पवंदा। सऊदी अरब विच में गॾियल दिफ़ाई मुआहिदे जी आजियां आसिफ ज़रदारी चयो त मुआहिदो खिते में अमुन सलामती ऐं इस्तेहकाम लाइ अहम अगभराई आहे जेको टिनी भाइर मुल्कनि जे महफ़ूज़ ऐं खु़शहाल मुस्तक़बिल जो अज़म ज़ाहिर करे थो। मुआहिदे सां टिनी मुल्कनि विच में दिफ़ाई सहकार वधीक मज़बूत थींदो। पाकिस्तान जे दिफ़ाई ताक़त दुनिया ॾिठी ऐं तस्लीम कई आहे। दिफ़ाई मुआहिदा कंहिंजे ख़िलाफ़ जारियत लाइ न पर दिफ़ा लाइ हूंदा आहिनि। वफ़ाक़ी वज़ीर अता तारड़ जो पाई मुआहिदे ते बयान। वज़ीर मुराद अली शाह ऐं पंजाब जी वज़ीर आला मरियम नवाज़ पारां बि टि मुल्की दिफ़ाई मुआहिदे जी आजियां। वली मोहम्मद बिन सलमान साग डार ऐं फ़क़ात में मौजूद हो ते ग़ौर वीचार कयो वियो। कसर सुबुह पहुचण ते